आप कराए सख्ती फिर आप कराए मार। एक नागली जजीरिया एक तुरी चढ़े पिसियार आप कराए करे आप।

दिल्ली में शीशगंज रकाब गंडवाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहेबानी दे सुख दे दर्शन दीदार मिले

चंड का सक उभारा खोखट अपहरा नद गाए अष्टमाल का सक संग लाए पुन आयो हिंडोला पंचनार संग अष्ट सुत।

गुड़ जड़ कंक धार डार डार पांच ठग मार मार डार ही डूबे नरक दार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहित।

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केत कछ मछ केते उनको करत भज केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केत नव बीज अच पच को करेंगे भज केत कब्रत अच हो।

मैं उड़त कित जल मैं रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चोचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोर नमनाए।

खदी रोग के सोख सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जा छगंद्रव किन्नर कहानी कहूं राजसी साध की तापसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जोगतं कहूं भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राजतन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की ऋष पन्या कहूं वेद विद्या कहूं भूम वाणी कहूं गोग की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान।

कहूँ रोग हरता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ अरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाग्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ अंतर विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ भीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारुडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ झैल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजन।

अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धरम। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र ब्रात नहीं मित्र मात, जय करम बरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं ब्योत बान, जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चयन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम थाव नहीं बर्ग व्यात, जय रोग शोक नहीं शत्रु सात, जय द्रास वास नहीं देह नास, जय याद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कते, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अच्छा अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत, तन सीत खाम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन वितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधंत, तद्दो पावत न पार, कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत, कई उर्ध मध्य पावक झुलंत, कई सिमृत शास्त्र दुचरंत वेद, कई गोक काव कथत कते, कई अग्नहोत्र कई पौन हार, कई कर्त कूड मृत को आहार, कई कर्त साग पै पत्र भच्छ, नहीं तदब देव हो वत प्रत्यक्ष, कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, कहूँ वेद रीत जग याद क्रम, कहूँ अग्नहोत्र।

पाद नमात पितंग जे रचियं छत्रि छत्र चितंग जे राग नरेग नरोग भणंग जे द्वायक न दाग न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवगंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड से तज उद भुजंग किए देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जातन पातन ज्योत जुतंग जे तातन मातन प्राद सुतंग जे रोग न सोग न भोग भुअंग जे जम पै किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाज रथा दिग पांद गणंग बहुत भवेख भवान तुअंग जेहे अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन

दूता भूता चूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेद वेद छेद नरंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग नरंग नरे गुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंगर चे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रपान गंज प्रतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूपा दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपै सुद सिंधु दो मुखताप तपै गई कल्प लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सभ तज है एक चित्त कृपा निध को जप है देव या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कूट प्रति इम वेद उचार सार सुती जो

है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास सदीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है, सदा गंज गंज गंज है, सदीव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है, अचिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्धता, प्रताप पत्र जानी है, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेग है, अधोग ताग तक है, अभूत ब्रह्म भेक है, न तात मात जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अदेक सेग भेक है, सदीव विश्व वर्ण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्व वर्ण है, जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नेत।

है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाव है। न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है। न राग है न रंग है न रेख है न रूप है। न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाव है। न छल है न छिद्र है न

न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेद है बलिया रूप राग रंग है। न द्वैख है न भेद है न काम क्रोध कर्म है न जात है न बात है न चित्र चहन वर्ण है। बेअंत है अनंत तेज जानी है अभूम भिज है सदा छिज तेज मानी है। न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखी है अदोख है अदाग है अच्छे प्रताप देखी है। न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है। न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है। न काम है न

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद बुरक अपार हस कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार जात पात न दाद जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रम्यो जय चक्र

देवा देव गंधर्व किन्नर मच कच अपार भूमका जले तले महिमान्य जय नाम। दुष्ट हर्ता पुष्ट कर्ता श्रेष्ठ हर्ता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद। मित्र बालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद। अघाव दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल। सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अन काम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व सा

कहाँ रंग राजा कवन हरक सोग है कवन गोरो की रागी कवन कहो दत्त मह तवन दोहरा कवन सृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो।

डावरूडवंकेप बरबवंकेप जाफरंके तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण दमके अतिथि चमके फुंक फनंग जय जय होसी मै खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खांडे अखंडन खून किते दामनी दमंकन तुजा फलंकन फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूमा का सल उर्दा थे दामनी प्रहासन सुछभ निवासन श्रेष्ठ प्रकार।

अघोघ निवारण दोष प्रचारण श्रेष्ठ उपारण सोधमते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साधमते सहती सन्नाहनाश प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हुसी मखा जुर्मर्दन भूम काज पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुरहारण दुम दुंकारण द्रप मते डाल डाल

0: पूर्वी ने पार पावा है गुलाम वाले ने को अगर दे दी गुलाम वाले दे रहा है पूर्व का जो दे दियो गुलाम वाले पावा है सार ना ने दे दियो जो यार बने यार बने यार दे दो बने यार बने यार बने यार फिर के फिर की माने धारी कुल सर के बचन के बचन के बचन ने जो नाम है के प्रकट में कर दे दे बन सुन कर सर के दे दे के लिए मन में उतर दे सर के दे दे के पहचान सर है बंग के बताले दे रहा के बंग वाले बताले के दे वाले दे दे ये के ना चले दे के दे वाले दे दे मैं ले मां दे दे के ना के दे दे बंग से बुद दे दे बाप के जो को मत कर दे दे बाप को जो मत कर दे दे सिन मजीन के से वो को मत कर दे दे वाले दे दे के दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे
1: पटक
0: ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ

मेरा प्रीतम प्यारा प्रीतम मेरा प्रीतम प्यारा प्रीतम प्यारा कोई यार मिला मेरा प्रीतम।

हरा सुरहाव हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मलै त्रिपता सहमल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए धृग जीवै धृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन

हर हर जियो परिया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाव जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैको सातिस पाछे बचरे छरिया तिन कवण खलावे कवण चुगावे मन मह सिमरन करिया।

चौथा सो परख एक ओंकार सदगुर प्रसाद सो परख निरंजन हर परख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब ध्यावह तुद जी हर सच्चे सरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ध्यावो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाना।

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अद्भुज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशद फल पावे सोई दुख नात सह व्यापत कोई अड़िल सुनै गुंग जो याहे

चौपई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मन अग्न सह प्रथम नाऊ किशन बिशन कबहु नह ध्याऊ कान सुनै पहचान नतन सो लव लागी मोरी पग इंसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज बिचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय

आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, दास जान कर कृपा करो, मैं हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान कर।

चित तामे धरो अब रीज के देहो वह हम कहो जहां बिनती कर जोर करो जब आओ कि आओ धनदान बने अत हीरन में तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करीब नाय अवर

सवैया पाए कहे जब ते तुम रे तब ते को आख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मानेओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जानेओ श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तो

लेंगे बचे शरण जो हो दोहरा उठ गए सभा मले चुके कर पूरा पासार डंगा बाजे फजकार है रंग उदार चातर चक्रवर्ती चातर चक्र भुगते स्वयं पौ शुभंग सरदार।